थो रोड नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जे उपेश बाखी निना दिसन थौ नेपाल सम्मत सिंसव पीको द बचलागा नवमी संघीय संसदीय बजेट अधिवेशन थौ निसे न्यातिङ दु प्रतिनिधि सभा व राज्यसभा नेसिया निता इले बिस्कम बिस्कम चुनिगुली सरकार पिथङ्गो सार्वजनिक खरिद निकोगो संशोधन अध्यादेश सार्वजनिक पदाधिकारी या पदमुक्ति जुइगु विशेष व्यवस्था यागु अध्यादेश संवैधानिक परिषद ज्या कर्तव्य अधिकार व ज्या विधि नापाङ्गो संशोधन अध्यादेश निसे च्यागु अध्यादेश न्यापुइगु ज्या धलादुगु संसद सचिवालय धाको ख राष्ट्रसभा मुज्यान थो अध्यादेश त न्यापुइगु धाको दु सरकार रणनीति तथा ज्याजो संघीय संसदीय न्यवे तेङ्गुदो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय संसदीय न्युगुली सदन या मङ्का मुज्या सरकार या नीति तथा ज्याजो न्यभुइगु ज्या धल दुगु संसद सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरी तैदिगु ख राष्ट्रपति निनेसिया पिताइले नीति व ज्याजो न्यभुइगु ज्या धल दु टर्किया इस्तानबुल वगु टर्किस एयरलाइन्स या विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले दिगुगु झोले थौँ सुथे मि नोया सुरक्षित नक्सा दिगुगु दु टिके 726 नम्बर या टर्किस एयरलाइन्स विमान ने पेमो मस्त नाप निस व नेसोम यात्रु व चालक दल या चिनसम्म दुज सुरक्षित उद्धार जुगु थागुदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या सभापति रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत या प्रधान न्यायाधीश या सिफारिस संविधान दुनि जुगु यथादिगुदु पार्टी या प्रशासन विभाग शासन पिन्त गोसाको गु प्रशासन या ज्या झोले सभापति लामिछाने संवैधानिक परिषद व प्रधान न्यायाधीश या नियुक्ति संविधान कथन जुगु थ्वाधिका दिगुदु भागुण्डा थपिन्त पलसा मधुको न्यायाधीश सभापति लामिछाने न्यायमूर्ति पिनुगु सूची कथन संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश लियोगु परीक्षा नियन्त्रण ज्याको 2082 साल या माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई या लिचो प्रकाशन या नीति तयारी झ्याको गुदु हङ्गु चैत्र 19 गते निसे 29 गते तक झ्याको उगु परीक्षा उत्तर पुस्तिका परीक्षा सिधेव परीक्षा लिसे सम्परीक्षण झ्याको उगु ज्याको थि थोहे वैशाख 29 गते दुनि लिचो सार्जन ग्यागु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड थागु ख परीक्षा नियन्त्रक टुक राज अधिकारी कथ आश्वी नियामक कर्मचारी टेबलेसन व्यस्त जुयादिगु दु वैशाख 29 गते दुने लिचो पिथनेगु आज तया तगु वेक्ल कनादिला माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई व्यवस्थापन लिसे उत्तर पुस्तिका परिषद निर्देशिका 2082 ले परीक्षा कोचागु लिपाक सोनिया दुने उत्तर पुस्तिका परीक्षण सिधेके मागु व्यवस्था याना तगु दु थगुने नियमित स्तर वृद्धि पाखेयाना न्यागु लाक चिन्निदो व पेस व निसम विद्यार्थी परीक्षा पूर्ति कागु ख सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाह या त स्वच्छ व लक्कस कत न्याके त थौनि से जेठ 1 गते तक दैनिक सूचीपुचु वा न्याकेगु घोषणा या आगु दु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद च्याकु छगु विशेष च्याजो दुथि सङ्घीय मन्त्रालय लिसे स्थानीय तह तक फुक निकाय त अभियान पुति क्या त उज नाप बिउगु ख थो अभियान थौ सुते च्या त त्या इल निसे वीर अस्ताल या आगु दु मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व या सरकार त पेङ्गु दल ग्वाली याना चुनेगु कोचुगुदु मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव या त नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी थथे कोचुगु ख बुधबार जुइगु विश्वास या मत या नीति थथे पेङ्गु दल ग्वाली यागु कोचुगु ख प्रदेश काङ्ग्रेस या निनिगु जसपया चिन्हेगु नेकपा या चिन्यागु व लोसपा या च्यागु याना खुइनिगु सिट दु राष्ट्रिय योजना आयोग थिति च्यागु सडक आयोजन या बहुवर्षीय स्रोत समिति या नीति अर्थ मन्त्रालय सिफारिस यागुदो आयोग या मुज्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाखे कार्वने दुगु धनगढी खुटिया दिपाल चैनपुर उरे भन्ज्याङ सडक खुलालु सल्ली सल्ला सडक व उकिया खुगु ता कर्णाली कोरिडोर या उत्तरखण्ड हिल्सा सिमकोट सडक लेले भारदेव चन्द्रपुर ठुला दुर्लुङ सडक भेरी कोरिडोर जाजरकोट दुने मरिम तिन्जे धो रिम्ना सडक खण्ड या चिन्पेगु ता रोल्पा या सहित मार्ग या नीति स्रोत समिति नीति सिफारिस यागुदु
आर्थिक ते उद्योग कत व्याकेत लगानी अपेको कथ बजेट हेत नेपाल उद्योग परिसङ्घ इनापी आगुदो अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नापम हिक नाप्रना परिसङ्घ नाय वीरेनराज पाण्डे नापया पुचल थते इनाप यागु ख उद्योग लगानी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कर नीति ओ प्रणाली प्रसार पर्यटन कृषि जडीबुटी ओ वन पैदावार ऊर्जा सूचना प्रविधि लागा ब्याङ्किङ ओ वित्त बिमा सहकारी ओ पुँजी बजार स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन पूर्वाधार स्वास्थ्य ओ शिक्षा गैर कर राजस्व चुहावट ओ सम्पत्ति शुद्धिकरण नाप लागा नाप स्वागुली बजेते क घात इनाप यागु ख वाङ्मे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सचिव कुकोगु बुदिया लसता वैशाख 24 गति निसे वैशाख तक छवाइङ्क तिथि ज्याजो यना हना चङ्गुदु ओ हे झोले नेपाल भाषा साहित्य दबु हलि नेवा दबु साहित्यिक कवया गोसाले नेपाल भाषा सत्यमोहन जोशी साहित्यिक योगदान या विशेष चर्चा परिचर्चा ज्याजो कोचागुदु लोककवि राजभाइ जकमिया नासिजुगु ज्याजोले अञ्जना ताम्रकार मिमला शर्मा साक्य सुरेन विमल प्रभा रचाचार्य दिव्या ताम्रकार निसे साहित्यकार पिन्छन् जोसिया थिति कृति दुनिया मे बुद्ध भचन चकुचा हागु मे वाचन यानादिगु ख नुगु खन्तेगु छोले मदन सेन ब्रजाचारी अनुराज जोशी डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार प्रतिश्वरा सामी ओ पौवा सामी पिन्छन् जोसिया दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या उद्योग व्यापार ओ सेवा सम्बन्धी होता या त छगुहे थासे हेगो तातुना बिहिबार निसे स्थानीय प्रक्रमण्डप साउथ एसिया ट्रेड फेयर 2026 जुयाचुङ्गुदु सार्क दे या उत्पादन व सेवा या प्रवर्धन बजार सम्भाव्यता अध्ययन या नीति थोज्याजो जुयाचुङ्गु मेला या कोजी सुमन मर्जन धाइदिगु ख तिथि थास खुवाइङ्कुगु खुइन्याग मोटरसाइकल ओ स्कुटर लुइका बिउगुदु छगु ज्याजो दथि पिन्याग मोटरसाइकल ओ निग स्कुटर लित बिउगु ट्राफिक प्रहरी थागु ख शान्ति निकुञ्ज पूर्व विद्यार्थी सङ्घ नुद ओ नुगु ज्यास्ना पुचयात फिन्तुना बिगु ज्याजो कोचाकुगुदु अनिता मानन्दरिया नासिजुगु ज्याजुले पाकथ पूर्व विद्यार्थी एसएलसी सेकेन्ड ब्याज विक्रम सम्म 2008 साल शिवबहादुर नेपाली पाकथ डाक्टर मदन मानन्दर जुजुबाई तुलाधर श्रद्धाचारी गुरुमा पि छाइदिगु ख विक्रम सम्म 2007 क्रान्तियना निसुङ्गु शान्ति निकुञ्ज विद्यार्थी अब्बल जु धाइगु दसु कथन 2020 साल या एसएलसी बोर्ड फर्स्ट हेत तालाम दीपक ब्रजाचार्य या त लुमुङ्गु गु ख अथ पूर्व विद्यार्थी दोती सल्लाह व सुझाव कालबिल जुलो धासा

0: रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय सदनके दुनू संयुक्त बैठकमे सरकारक आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत ई जानकारी कहलनि अछि। सरकार साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्यूटर आ AI कम्प्यूटर निर्यात के प्रवर्धन कयल जेबाक उल्लेख कयलनि। सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्र के राष्ट्रीय रणनीतिक उद्योग घोषणा कऽ सॉफ्टवेयर डिजिटल सेवा के प्रवर्धन करबाक जनौलक अछि। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमता के डेटा सेंटर आ सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास कऽ नेपाल के टेक हब के रूप में आगू बढ़ेबाक राष्ट्रपति पौडेल बतौलनि। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योग के वित्तीय सहूलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी सहित नव प्रवर्तन खर्च में कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराओल जाए, ओ कहलनि। सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष में पूंजी बाजार के सुरक्षित प्रतिस्पर्धी आ अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुरूप विकास करबाक विषय के नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कयलक अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रस्तुत कयल आबयवला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में एहि विषय के समावेश कयल उल्लेख अछि। सरकार धितोपत्र नियमन नेपसे तथा क्लियरिंग प्रणालीक पुनः संरचना करैत धितोपत्र बाजार में संस्थागत लगानीकर्ता, पेंशन कोष, बीमा, म्यूचुअल फंड आ गैर आवासीय नेपालीक सहभागिता विस्तार करबाक प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख अछि। ऋण बाजार, बॉन्ड बाजार, पूर्वाधार बॉन्ड आ जोखिम व्यवस्थापन उपकरण के प्रयोग कऽ दीर्घकालीन पूंजी निर्माण कयल जेबाक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सांसद लोकनि सुकुम्बासी बस्तीक व्यवस्थापन, डोजर आतंक, सीमा सुरक्षा के फितलापन, संसद सँ छलिकऽ आनल गेल अध्यादेश सहितक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण कयलनि अछि। बैठक में नेपाली कांग्रेसक सचेतक निष्कल राय प्रतिनिधि सभा कार्य संचालन संसद नियमावली समिति में फिरता पठेबाक मांग कयलनि। प्रतिनिधि सभाक आकस्मिक समय में सचेतक राय नियमावली में विवादित अहिन सब बाधल गेल आ कानून सँ नहि छू सकय वाला एहन आयल कहैत नियमावली टेबुल नहि कऽ समिति में पठेबाक मांग कयलनि। नेकपा एमालेक सांसद पद्म आर्याल सरकारक नया सोच कहिकऽ संसद के छोड़ि कऽ कार्यपालिका स्वेच्छाचारिता लदबाक प्रयास कयल आरोप लगौलनि। सांसद आर्याल सरकार द्वारा आनल गेल अध्यादेश आ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश के विरोध कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीक प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सुकुम्बासी बस्ती में डोजर लगेबाक संवैधानिक परिषद मार्फत प्रधान न्यायाधीश सिफारिश सहित में सरकारी कार्यशैली लोकतंत्र विपरीत भेल तथा सरकार निरंकुशता दिस उन्मुख भेल कहैत जवाबक मांग कयलनि। श्रम संस्कृति पार्टीक अध्यक्ष हर्क सम्पांग सीमा विवाद संबंध में सरकार ठोस डेग उठेबाक नहि सकल कहकर आपत्ति जनौलनि। ओ सरकार द्वारा सेनाक दुरुपयोग कऽ सुकुम्बासी बस्ती में आतंक मचाओल आरोप लगबैत देश अभिभावक विहीन बनल सरकारक औचित्य सम्पन्न भेल बतौलनि। राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी प्रमुख सचेतक खुशबू ओली व्यवस्थापन बिना सरकार सुकुम्बासी बस्ती में डोजर चाल कर हेत विरोध कयलनि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टीक सांसद जगदीश खरेल स्मार्ट टेलीकॉम सँ जोड़ि कऽ स्विंग विरुद्ध लगाओल गेल आरोप पुष्टि करबाक लेल चुनौती देलनि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सरकार इससे पहले आनल विभिन्न 8 अध्यादेश पेश कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहक दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि पहल संशोधन अध्यादेश 2083 सभा समक्ष पेश कयलनि अछि। एहि तरह अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश 2083 सभा समक्ष पेश कयलनि अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गौतम किछु नेपाल ऐन के संशोधन करबाक लेल अध्यादेश 2083 सभा समक्ष पेश कयलनि। एहि तरह भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल सहकारी पहल संशोधन अध्यादेश 2083 पेश कयलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री निशा मेहता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी किछु नेपाल ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल अध्यादेश 2083 पेश कयलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मंत्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालय संबंधी किछु नेपाल ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल अध्यादेश 2083 पेश कयने छलथि। राष्ट्रसभाक बैठकमे सांसद लोकनि बहुमतक सरकार अध्यादेश मार्फत शासन करब संविधानक मर्म विपरीत शक्तिक दुरुपयोग भेल बतौलनि अछि। राष्ट्रसभाक आजुक बैसल बैठकमे सांसद लोकनि विधिक शासनके निस्तेज करबाक लेल खोजबाक सरकारक प्रयासके आपत्तिजनक कहैत शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तके प्राथमिकता देल जेबाक बात पर जोर देलनि। बैठकमे सांसद लोकनि सरकारक शासन संचालन करबाक आधार संविधान आ प्रचलित ऐन कानून भेलाक कारणे बाल बालिका सुकुम्बासी ज्येष्ठ नागरिक तथा सरकारी कर्मचारी प्रति संवेदनशील भ सरकार सर्वोच्च अदालतक मर्यादा अपन अधिकार जिम्मेवारीक संग प्रयोग कयल जेबाक बात बतौलनि। सांसद लोकनि पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि महगी कालाबाजारी नियंत्रणक गरीब मजदूर किसान तथा सीमांतकृत समुदायक लेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना कयल जेबाक तथा प्रभावकारी बाजार अनुगमन आपूर्ति श्रृंखला के चुस्त बनाकर आम नागरिक सबके राहत देल जेबाक बात पर जोर देलनि। एहिसँ पहिने बैठक में राष्ट्रसभाक अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल अधिवेशन आह्वान सहित राष्ट्रपति से प्राप्त पत्र सभक ब्यौरा जानकारी करौने छलथि। सर्वोच्च अदालत विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संगठन खारिज करबाक निर्णय तत्काल कारण नहि करबाक लेल अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी कयलक अछि। न्यायाधीश श्रीकांत पौड़ेलक एकल इजलास आइ विश्वविद्यालय समन्वय समिति बीतल चैत 20 गते कयल निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहि करब आ नहि करेबाक कहिकऽ अल्पकालीन आदेश कयलक अछि। अदालत एहि विषयमे आबयवला जेठ 4 गते दुनू पक्षके छलफलके लेल बजौलक अछि। आदेशमे आधार आ कारण सहित बाटक म्याद अतिरिक्त सूचना पाओल तिथिसँ 15 दिन भीतर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश करबाक लेल आ रिट निवेदनके एक एक प्रति नक्कल सेहो सङ्गमे राखिकऽ पेश करबाक लेल कहल गेल अछि। अखिल नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन अनेरा सभिक अध्यक्ष दीपक धामी सेहो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय सिंह दरबार के विपक्षी बनाकर विश्वविद्यालयक विद्यार्थी संगठन खारिज करबाक निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दायर कयने छलथि। सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाह के मर्यादित स्वच्छ वातावरण मैत्री बनेबाक उद्देश्य आइ से राष्ट्रीय सर सफाई सप्ताह शुरू कलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री निशा मेहता आइ भिनसर 20 अस्पताल में पहुँच के सप्ताहक शुभारम्भ कयलनि। ओ स्वयं झाड़ू लक गंदगी सफाई करैत अभियानक शुभारम्भ कयलनि। मंत्री मेहता सफाई अभियान देश भरिक सरकारी अस्पताल आ सरकारी कार्यालय में संचालन कयल जेबाक बात बतौलनि। मंत्री मेहता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के थप सहज बनेबाक लेल छलफल भ रहल सेहो उल्लेख कयलनि। हुनका अनुसार आइ एक समय में देश भरिक सब अस्पताल में सर सफाई अभियान शुरू कयल गेल अछि। एहि अवसर पर प्रतिनिधि सभा सदस्य के पी खनाल अस्पताल बाहर प्लास्टिक के गंदगी भेटल विषय में संबंधित निकाय के जानकारी करबैत आबयवला दिन में अस्पताल प्रशासन सफाई पर ध्यान देल जेबाक बात बतौलनि। सरकार आइ सँ संघ प्रदेश आ स्थानीय तह अंतर्गतक सब सरकारी कार्यालय में सर सफाई सप्ताह शुरू कयलक अछि। अभियान आबयवला जेठ 1 गते धरि संचालन कयल जायत। अभियान संचालन करबाक लेल सरकार सर सफाई सप्ताह संचालन संबंधी मार्ग निर्देशन 2083 सेहो जारी कयलक अछि। सरकार सब सरकारी निकाय तथा शैक्षिक संस्था में स्वच्छ स्वस्थ आ व्यवस्थित वातावरण कायम करबाक लेल सर सफाई संबंधी आचरण विकास करबाक लेल सर सफाई अभियान शुरू कयलक अछि। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ आ पाशुपत क्षेत्रक महात्म एवं पवित्र बागमती नदीक विशिष्टता उजागर करबाक उद्देश्य कयल गेल पदयात्रा समूह द्वारा आइ पशुपतिनाथ मूल मंदिर में विशेष पूजा आराधना सहित शंकराचार्य मठ में 64 सिद्धलिंग के नामोच्चारण सहित हवन का बृहत पाशुपत क्षेत्र पदयात्रा 2082 64 सिद्धलिंग दर्शन समापन कयल गेल अछि। भगवान पशुपतिनाथ आ पाशुपत क्षेत्रक महात्म एवं पवित्र बागमती नदीक विशिष्टता समस्त सनातनी तथा नेपाली के जागृत करेबाक आ बागमती नदी प्रदूषित भेला पर भगवान पशुपतिनाथ एवं बागमती प्रति क्षमा याचना तथा प्रायश्चित करबाक उद्देश्यक संग पदयात्रा आयोजन कयल गेल छल। महेश संन्यास आश्रमक पीठाधीश एवं महेश संस्कृत गुरुकुलम के अध्यक्ष स्वामी रामानंद गिरिक सत्संकल्प में पदयात्रा कयल गेल अछि। बीतल चैत 15 गते पशुपति शंकराचार्य मठ में समुद्घाटन पशुपति पूजन तथा बागमती गंगाक महीनाक विशेष आरती का 16 गते पशुपति क्षेत्र से प्रारंभ भेल पशुपत पद यात्रा के शुभारंभ आदिलिंग कुशेश्वर महादेव के दर्शन से भेल छल। कुशेश्वर से दोलखा भीमसेनक दर्शन क वापस भेलाक बाद सिंधुली नुवाकोट धादिंग मकबानपुर ललितपुर भक्तपुर काभ्रे प्लांचौक जनकपुर आदि क्षेत्र में रहल सिद्धलिंगक दर्शन पैदल यात्रा का समूह आगू बढ़ल छल। 42 दिन में रवि दिन तीर्थ यात्रा पशुपति आबि चुकल। समापन कार्यक्रम में बृहत पशुपत परिक्रमा के संकल्पकर्ता तथा परिकल्पनाकार स्वामी रामानंद गिरी पशुपति तत्व के संबंध में प्रकाश करते पशुपतक लघु परिक्रमा माध्यम परिक्रमा आ बृहत परिक्रमा के संबंध में जानकारी करौने छलथि। भारतक चार धामक दर्शन तीर्थयात्रा पश्चात श्री पशुपतिनाथक दर्शन केलाक बाद मात्र चार धामक तीर्थयात्रा प्रयोजनपूर्ण सार्थक फलीभूत हेबाक मान्यता हिंदू धर्मशास्त्र में उल्लेख रहल अछि। वैदेशिक रोजगार विभाग कामदार पठेबाक इजाजत प्राप्त संस्था सबके श्रम संसार ऐप में जोड़बाक लेल निर्देशन देलक अछि। रेडियो नेपाल सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: नमस्कार, यो रेडियो नेपाल हो। प्रदेश समाचारमा स्वागत छ, म विजय यादव। मधेस प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारणले एचआइभी एड्स गर्ने उच्च जोखिमयुक्त प्रदेश रहेकाले सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ। मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनले आज जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो। विज्ञहरूले भारत सहित तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको क्रममा संक्रमणको जोखिम महिला तथा बालबालिकाहरूमा हुने भएकाले एचआइभी एड्सको परीक्षण नियमित रूपमा गराउनको लागि लक्षित वर्गलाई चिकित्सकहरूले सुझाव दिनुभएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चारमा रहेको 9.14 मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ। सुपर घलेम्दी हाइड्रो पावर प्रणाली प्रवर्धक रहेको आयोजनाले नारच्याङको घलेम्दी र रेले खोलाको दोभानदेखि अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा प्रस्तावित बाँधस्थल जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माण थालेको हो। आयोजनाका आवासीय इन्जिनियर प्रकाश भट्टराईले 5 किलोमिटर मध्ये 2 किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण सकिएको र कर्मचारी आवासका लागि भवन तयार भएको जानकारी दिनुभयो। 1.80 करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँधदेखि 4 किलोमिटर 200 मिटर दूरीमा पाइप लाइनबाट ल्याइने पानीलाई 420 मिटर उचाइबाट विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिने आवासीय इन्जिनियर भट्टराईले बताउनुभयो। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले देवघाटको धामको पहिचान संस्कृति र भूगोललाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। पालिकाको पहिचान संस्कृति र भूगोललाई उजागर गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आधारभूत तहका लागि हाम्रो देवघाट नामक पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त पाठ्यक्रम गाउँपालिकाभित्रका 35 सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइनेछ। पाठ्यक्रममा देवघाटको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व, स्थानीय पर्यटकीय स्थल, जनजीवन, वनस्पति तथा त्यहाँका जात जातिका संस्कारलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा 5 का अध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवरले शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन र देवघाटको समग्र चिनारीलाई शैक्षिक माध्यमबाट प्रवर्धन गर्ने पाठ्यक्रमले महत्त्व राख्ने बताउनुभयो। यस बरसातको समयमा कसैले पनि सडक पेटीमा कष्टकर जीवनयापन गर्न नपरोस् भन्ने करुणामय भावनाका साथ मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2083 थालनी गरिएको छ। यही वैशाख 27 जेठ 22 गतेसम्म हुन लागेको यस अभियानको मेची पुलबाट औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। यसै साथ प्रदेश समाचार सक्यो। सुन्दै रहनुहोला रेडियो नेपाल। हस्त, नमस्कार।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एसईई का परिणाम किया सार्वजनिक। अगले आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा संघीय संसद की संयुक्त बैठक में किए गए प्रस्तुत। राजनीतिक स्थायित्व और विकास के लिए नीति तथा कार्यक्रम पर दिया गया है विशेष जोर। सरकार द्वारा लाए गए संवैधानिक परिषद सहित सभी 8 अध्यादेश दोनों सदनों में हुए पेश। इस साल मानसून के दौरान देश पर 19 लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का प्रक्षेपण। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते करेंगे चीन का दौरा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई 2082 का परिणाम सार्वजनिक कर दिए हैं। सार्वजनिक परिणाम के अनुसार इस वर्ष देश भर से परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों में से 65.98% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के अनुसार इस वर्ष की परीक्षा में कुल 4,30,667 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,84,160 विद्यार्थियों ने उच्च कक्षा में भर्ना होने के लिए आवश्यक ग्रेड प्राप्त किए हैं। परिणाम के विश्लेषण अनुसार सबसे उच्च जीपीए अर्थात 3.60 से 4 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48,392 रही है। इसी प्रकार 3.6 जीपीए प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 80,372 है। इसी तरह 2.8 से 3.2 जीपीए तक 94,222, 2.4 से 2.8 जीपीए तक 55,977, 2.2 से 2.4 जीपीए तक 5,190 और 1.6 से 2 जीपीए तक 7 विद्यार्थी हैं। इस वर्ष के परिणाम में 1,46,507 विद्यार्थियों ने एनजी यानी नॉन ग्रेडिट प्राप्त किया है। एनजी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुनः ग्रेड वृद्धि परीक्षा में शामिल होना होगा। बोर्ड के अनुसार 2 विषय तक एनजी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए तत्काल ग्रेड वृद्धि परीक्षा संचालन की जाएगी, जबकि उससे अधिक विषयों में एनजी आने वाले विद्यार्थियों को अगले वर्ष की नियमित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने दावा किया है कि इस वर्ष का परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में संतोषजनक रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार दिखाई दे रहा है। संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। संघीय संसद की आज की संयुक्त बैठक में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि एक ही दल के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का गठन देश के लिए राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता प्रदान करने वाला ऐतिहासिक अवसर है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने सुशासन को समृद्ध नेपाल की आधारशिला मानते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाह में सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता और सामाजिक उन्नति को अभियान के रूप में आगे बढ़ाएगी। सरकार द्वारा आगे बढ़ाए गए शासकीय सुधार के 100 कार्यसूची का पूर्ण क्रियान्वयन करते हुए उसे निरंतरता दी जाएगी। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि नेपाल को सम्मानजनक मध्यम आय वाला देश बनाने के लिए आगामी दशक में औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7% तक पहुंचाने हेतु आर्थिक सुधार के नए चरण शुरू किए जाएंगे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि डिजिटल कारोबार को प्राथमिकता दी जाएगी, राजस्व चुहावट को नियंत्रित किया जाएगा और कर संरचना की पुनः समीक्षा कर उद्यमियों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ कम किया जाएगा। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के नियमन और प्रभावकारी व्यवस्थापन के लिए राष्ट्रीय सहकारी नियमन प्राधिकरण की क्षमता का विस्तार किया जाएगा और समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं में जमा बचतकर्ताओं की राशि लौटाने के लिए एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक खर्च को परिणाम मुखी बनाते हुए सार्वजनिक संस्थानों में सुधार, खर्च कटौती और चुस्त सेवा प्रवाह को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक संस्थानों का वर्गीकरण कर उन्हें विलय किया जाएगा, निजी क्षेत्र के साथ सहकार्य किया जाएगा और रणनीतिक साझेदारों को लाने की स्पष्ट नीति लागू की जाएगी। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सीमाहीन अर्थतंत्र और भार रहित व्यापार को राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति के रूप में अपनाते हुए सूचना प्रविधि आधारित सेवा निर्यात, जल विद्युत और पर्यटन को आर्थिक रूपांतरण के प्रमुख आधार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे अच्छे अभ्यासों को लागू कर पूंजी बाजार को टिकाऊ और सुरक्षित बनाया जाएगा। राष्ट्रपति पोरेल ने कहा कि वैदेशिक सहायता से प्राप्त ऋण को प्रतिफल देने वाली परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, किसानों की फसल और पशुधन बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा और बीमा प्रणाली को डिजिटल माध्यम से जोड़ते हुए किसानों की पहुंच बढ़ाई जाएगी। सुकुमवासी समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासियों की पहचान कर उनके स्थायी आवास और भूमि स्वामित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। चलचित्र, वृत्तचित्र और फोटोग्राफी को उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा तथा देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवर्धन करते हुए नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र छायांकन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्षमता वृद्धि की जाएगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को संस्थागत रूप से सुदृढ़ बनाते हुए अनुसंधान और कार्यवाही प्रणाली को प्रभावकारी बनाया जाएगा और राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र की भ्रष्टाचार निवारण इकाई के रूप में पुनः संरचना की जाएगी। राष्ट्रपति पोरेल ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता को अवसर के रूप में ग्रहण करते हुए राष्ट्र के समग्र रूपांतरण को गति दी जाएगी। उत्तरदायी शासन प्रणाली के माध्यम से राज्य के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ाते हुए समुन्नति केंद्रित सुशासन को संस्थागत बनाना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने का मार्गदर्शन होगा। नीति तथा कार्यक्रम में उत्पादन लागत घटाने, व्यावसायिक वातावरण को सरल बनाने व स्वदेशी, विदेशी और अप्रवासी निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक उत्प्रेरणा की पुनर्संरचना करने, दीर्घकाल तक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य आर्थिक नीति बनाए रखने तथा राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता योजना चयन और क्रियान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम संयंत्र निर्माण पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार श्रम प्रधान निर्यात संभावना वाले कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हल्के उत्पादन और प्रविधि आधारित उद्योगों के विस्तार के लिए रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापित करने, सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से परियोजना पाइपलाइन तैयार कर निवेश जोखिम बांटने व समझौता ढांचा स्पष्ट करने और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बाजारमुखी बनाने के लिए महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति तैयार करने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों तक नवीनतम प्रविधि विस्तार के माध्यम से डिजिटल विभेद को कम करने की घोषणा की है। दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम प्रविधि विस्तार, रेडियो फ्रीक्वेंसी व्यवस्थापन के मापदंड तथा सुदृढ़ अनुगमन प्रणाली लागू करते हुए डिजिटल क्षेत्र विस्तार के माध्यम से डिजिटल विभेद कम करने की बात नीति तथा कार्यक्रम में कही गई है। नेपाल के संविधान 2072 की धारा 95 में राष्ट्रपति द्वारा संघीय संसद की संयुक्त बैठक में सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में तय प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार आगामी जेठ 15 गते अगले आर्थिक वर्ष का बजट प्रस्तुत करेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: छोरा के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा का दूसरा अधिवेशन शुरू हो गया है। आज बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसद अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, जिसके बाद सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने आकस्मिक समय में बोलने के लिए समय देने का आश्वासन पहले ही दिए जा चुकने का जिक्र करते हुए बैठक संचालन में बाधा न डालने का आग्रह किया। इसके बाद नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले और श्रम संस्कृति पार्टी के सांसदों द्वारा आसन ग्रहण करने पर बैठक सुचारू रूप से आगे बढ़ी। बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन आह्वान संबंधी पत्र पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों को आकस्मिक समय में 3-3 मिनट बोलने का समय दिया गया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विभिन्न 8 अध्यादेश पेश किए गए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने इस बीच जारी किए गए सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 तथा संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि प्रथम संशोधन अध्यादेश 2083 पेश किए गए। मंत्री गौतम ने ही कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश 2083 भी प्रस्तुत किया। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने संपत्ति शुद्धिकरण, निवारण तृतीय संशोधन अध्यादेश 2083 पेश किया। इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री निशा मेहता ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश 2083 तथा शिक्षा विज्ञान एवं प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल ने विश्वविद्यालय संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश 2083 बैठक में प्रस्तुत किया। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने सहकारी प्रथम संशोधन अध्यादेश 2083 बैठक में पेश किया। इस वर्ष के मानसून अवधि में देश भर औसत से कम वर्षा होने की संभावना है, फिर भी तापमान वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण मानसून जनित विपत्त का जोखिम उच्च रहने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा आज सार्वजनिक किए गए मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्य योजना 2083 के मसौदे में 19 लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो सकने का अनुमान लगाया गया है। मसौदे के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमताल विस्फोट का जोखिम बढ़ा है, जबकि तराई और निचले क्षेत्रों में बाढ़, डुबान, भूक्षय आदि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दैनिक तापमान वृद्धि और गर्म हवा की लहर के कारण विशेषकर दक्षिणी तराई क्षेत्र अधिक प्रभावित हो सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी संगठनों को खारिज करने के निर्णय को तत्काल लागू न करने का अल्पकालीन अंतरिम आदेश दिया है। न्यायाधीश श्रीकांत पोडेल की एकल इजलास ने आज विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा गत चैत 20 कते लिए गए निर्णय को तत्काल लागू न करने का आदेश दिया। अदालत ने इस विषय में आगामी जेठ 4 गते दोनों पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया है। आदेश में कहा गया है कि आधार और कारण सहित रास्ते की मियाद को छोड़कर सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से लिखित जवाब पेश किया जाए और रिट निवेदन की एक एक प्रति भी साथ प्रस्तुत की जाए। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनेरा स्वयू के अध्यक्ष दीपक धामी सहित ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय को विपक्षी बनाते हुए विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी संगठन खारिज करने के निर्णय के विरुद्ध रीट निवेदन दायर किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव आगामी जेठ 1 गते शुक्रवार को विश्वास मत लेंगे। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने जेठ 1 गते विश्वास मत लेने के लिए प्रदेश प्रमुख कार्यालय को सिफारिश करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने दी। मध्य प्रदेश सभा के 7वें अधिवेशन के लिए बैठक आह्वान संबंधी पत्र मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय से प्राप्त होने की जानकारी प्रदेश प्रमुख कार्यालय के सचिव नारायण प्रसाद दाहाल ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रमुख कार्यालय आज ही प्रदेश सभा की बैठक आह्वान करेगा। 5 दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद यादव को दिया गया समर्थन 1 दल अर्थात जनमत पार्टी के संसदीय दल के नेता चंदन कुमार सिंह द्वारा वापस लेने के बाद संवैधानिक प्रावधान अनुसार 30 दिनों के भीतर विश्वास मत लेना आवश्यक हो गया है। इसी कारण मुख्यमंत्री यादव जेठ 1 गते विश्वास मत लेने जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान से कई मुद्दों के बीच चल रही तनातनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। यह लगभग 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा होगी। ट्रंप की यह यात्रा मार्च में होनी थी, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से टाल दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मध्य पूर्व में चल रही तनातनी और हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची भी चीन के दौरे पर गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है और उसकी नाकाबंदी करना सही फैसला नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने SEE का परिणाम किया सार्वजनिक। अगले आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल द्वारा संघीय संसद की संयुक्त बैठक में किए गए प्रस्तुत राजनीतिक स्थायित्व और विकास के लिए नीति तथा कार्यक्रम पर दिया गया है विशेष जोर। सरकारद्वारा लाए गए संवैधानिक परिषद सहित सभी 8 अध्यादेश दोनों सदनों में हुए पेश। इस साल मानसून के दौरान देश भर 19 लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का प्रक्षेपण। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते करेंगे चीन का दौरा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
6: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: झन्डु आयुर्वेद,
8: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
7: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
8: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
7: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसिनको समेत सुविधा छ।
8: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
9: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
10: नागरिक लगानी कोष।
11: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ।
9: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
10: नागरिक लगानी कोष।
12: सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपाल,
13: नेपालको समावेशी आवाज।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।